चेस शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौड़ा वाक इन डिपार्टमेन्ट भवन सँगै मोबाइल 9562324093 र 9562438073।

ल बाँच परे है हजुरलाई जिन्द ज्ञानी दर्पण छाया ए बाट पालो पर्यो नि त अब ए बाट चाहिँ के चाहिँ गाउने होला।

0: गरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9855202779।
2: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइटल
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301